सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके। आप

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: 听见你。
1: 能 speak up。मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना आई कैरी पेपर स्प्रे
0: ओके
1: बाय द वे नेहा

0: कृषि विकास बैंक
1: तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक।
2: आईएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर वन रेमिटेन्स कम्पनी।
3: आईएमई गरौं